0: तिसे भारत लै कवन जोर।
1: जी जा तिरंगा के नाव सबना
0: एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए
1: केता तान सवाल्यो रूप केती दात जाने कौन कूत
0: कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ
1: कुदरत कौन कहा विचार वारण जावा एक बार
0: जो रुद भावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ
0: ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
1: असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार
0: असंख सूर मोह पक्षार।

0: चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे
1: गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे
0: गाव है इंदिन बैठे देवते अंदर नाले
1: गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध बेचारे
0: गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे
1: गावन पंडित पंडर खीसर जुग जुग वेदा नाले
0: गाव है मोनिया मन मोहन सुरगा मश प्याले
1: गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले
0: गावे जोद महाबल सूरा गावे खानी चारे
1: गावे खंड मंडल बर पंडा कर कर रखे तारे
0: सही तुदनु गावे जो तुद पावन रत्ते तेरे भक्त रसाले
1: और केते गावन से मैं चितना आवन।

0: नमो जोग जुगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज रुजे स्वरंग परम वृद्धे
1: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमीय अपोकीय अपोक्ते नमो जोग जुगे स्वरंग परम जुगते।

0: जंतर जंतरंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग
1: सदा सचिदानंद सर्वं परनासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा प्रेत कर्ता अदो उर्दर गंगा गंगा उगहर्ता
1: परम परम परमेश्वरं पोषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
0: अशेदी अपेदी नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त स्थामंग तेरा जोर चाचरी छंद
1: जले है थले है अभीत है अभे है
0: प्रभु है अजू है अदेश है अपेस है पुचंग पयात छंद
1: आगादे आबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने
0: नवस्वंग नाथे न

0: चकर बकर फिरे चतुर चक मान ही पुरतीन।
1: लोग 14 के बिखे जग जापई जय जाप।
0: आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबे जय थाप।
1: परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार।
0: सर्व विश्व रचयो स्वयंभव गण पंचन हार।
1: कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देस।
0: गर्भधान सो परम रहत पूते अलख पेस।
1: अंगरागना रंग जाके जात पात ना नाम।
0: पंजन मुक्त दायक काम।
1: आप रूपा मी कनुस्तद एक पुरख अवधूत।
0: गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत।
1: अंगीना पंगनातम एक पुरख अपार।
0: सर्व लायक सर्व कायक सर्व

0: के कर्मं करी मैं के सर्वं कली है के सर्वं दली है।
1: किस सर्वत्र माने है किस सर्वत्र दाने है किस सर्वत्र गौण है किस सर्वत्र पौण है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है
1: किस सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र बाल है
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है
1: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है
0: के सर्वत्र मानी है सदैव अंग प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है
1: के सर्वत्र पन है के सर्वत्र मन है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है।

0: युक्त स्वरूप है त्रमुक्त बभूत है प्रयुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा
1: है स्वरूप है अपेद अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है
0: समस्तो सदा मैं सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है
1: अगाध रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
0: त्रभंगं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे
1: त्रिभुक्त स्वरूप है छिज है छूत है के नरकंक
0: निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है।

0: नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग बपुते
0: अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांक बंके
1: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तरपंगी तिरकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी छंद
0: अज अल अप अब
1: अजू अनास कास
0: गंज अपंज अलख

0: देखे भुजंग पयात छंद।
1: नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजल नामे समस्तुल निवासे।
0: निर्कामंग भूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सो धर्मंग भूते।
1: सदा सचदानंद सतरंग परनासी करी मुनक निंदा सम

सुखमणी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन बिसराम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम रसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै।

प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नाव निद प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगै बानी प्रभु कै सिमरन होए सो भला प्रभु कै सिमरन सुफल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा प्रभु कै सिमरन उदरै मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बूजै प्रभु कै सिमरन सबकी सूजै प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए।

ऐसा नाम मन सदा ते आइए, नान गुरमुख परम गत पाइए। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार पराही, अनक बिघन जह।

जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वखियान जोग ब्यास करम तर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए।

नौखंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपी सर थीवै, अगन माहे हुमत प्राण, कनक असब है वरपुमदान, नूली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमक निमक कर सीज कटावै, तो पी होमे मैल न जावै, हर के नाम सब सिर कृष्ण आहे नान।

जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा दिने हस्त पाव करन रित रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मोड़ अंत।

अपलेलाय मिथ्या तन तन क्रम समाया मिथ्या हमे ममता माय मिथ्या राज गुण तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ अस्थि अश वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेकस्ता मिथ्या त्रु मोह विमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्त्र भक्त साधकी शरण नानक जप जप जीवी हर की चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर द्रव को हिरा मिथ्या नेत्र पिक्त पर तीर पाद मिथ्या रसना पूजन अन्न स्वाद मिथ्या चन बकार पर बकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तनी पर पुकारा मिथ्या वास देत पिकार बिन बूझे मिथ्या सब भए सफल दे हर हर सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी सागत की आर जा साच बिना के होवत सूचा बिरथा ना बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बहाए मेक बिना जो कीती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपर के निरार्थ दा तन तन ते जंजे कटवस्य हरण आओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मानी प्रीत मुखे गन लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेशे आप न करे आप जात जन्मे मरै

ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्प को सोख, ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट सम्मान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्मज्ञानी के तीर्ज एक जो वसुद्धा को खोदै

ब्रह्म ज्ञानी सकल किरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद।

ब्रह्म ज्ञानी जस कर प्रभे आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइया ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइया ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी को सागल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी

नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब पर हाथ।

जित जित लावो तित तित लगना, नान करते की जान करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्पो पाए, कई कोट पाथर बिरख निक जाए। कई कोट पौन पाणी वै संतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सिर सूर निखत्र, कई कोट देवदान इंद्र शिर छत्र।

केंद्र मस होए, जब लग जाने मुझते कुछ होए, तब इसको सुख नहीं कोई। जब जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब धारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नहीं चीत, जब लग मोह मगन सगम आए, तब लग धर्म राय देह सजाए।

0: परम पूजाय अष्टपदि मानव की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिया रहे अगाए बौर न तृष्णा लागे आए मारे रखे एक हो आप मानुख का कृष्णा ही हाथ
1: जिसका हुकुम भूज सको जिसका नाम रखंट प्रो सिमर सिमर सिम प्रो आप सोए नानक बिघ्न लागे कोई उस मन में का निरंकार करम मेरे सत व्यवहार रसना मत पियो सदा सुहेला कर लै जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग सा संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिठे पाप जपी हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथ हर दरगह नानक जुल मथा मटपागी ते जन जग माहे सदा सदार के गुण गाए राम नाम जोखरे विचार से तनवंत कणी संसार मन तन मुख बोलो हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक एक एक पछाने तो तू की ओ सोझी जान नाम संग जिसका मन माने नानक तेरे निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपना आप सूझ तिसकी जाने तृष्णा भूजा साध संग हर हर जस कह सर्वरोग त्योहार जन रह अंदन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटे जम की भाषा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसै न लागे दुख जिसको हर प्रमाण जित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवको किसते डरे जैसा सा तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सो दत्त सो दत्त सो दत्त सीजिया गुरु प्रसाद सब बुझिया जब देखो तो सब किश मूल नानक सो सुकुम सोई असूल न किस जन्म न किश मर अपन जल दावी करे अमन जामन दिष्टन दिष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आप अनक जुगतरा था आपे उथा आप अपना सीना ही किश कारण धारण धार रहे हो ब्रह्मांडल कपे पुरख प्रताप आप जिपाए तन नानक जाप जिन प्रभ जाता सुसो बावंत सकल संसार उद्रतन मंत प्रभ के सेवक सकल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसार नापे मेले कृपाल गुरु का शब्द जप पै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनों कृपा करे बड़भागे नाम जोत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सब सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए होए सो वै सह सुभाए हो वै सो होए करनार पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सत ऐसा दिष्टाना जिसते जस माए समाए सो निधान नूह बने आए आपको आप दिनों महा नानक प्रभ

आज सोवे सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्राह्मण में राख मान की तो प्री त्याग तसे परे नहीं कुछ कोई सर नंत्रे को सोए आपे बिना आपे दाना गैर कबीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर को बंद कर पाने दा आंधे आल बख्शान दा साथ तेरे की चरनी पाओ नान के मन एहन राहो मनसा पूर्ण सरना जो होगे जो कृपा है सोई हो गर्न बन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्रना जाने होर अणध्रुव मंगल साहब जाके सब सुख दुनिया का करता के राज मैं राजयोग में जोगी तप मैं तपिस अगस्त में भोगी त्याई त्याई भगत सुख पाया नानक प्रकार के नियंत्रण पाया जाके लीला की मितना है सकल देव हारे गाय पिता का जन्म कह जाने पूज सकल प्रोई अपने समूह स्वत ज्ञान ध्यान जन दे जिस दास नाम त्या वैसे ते गुण में जाको परमाए जन्म मरा फिर आवे जाए उस निस्तस के स्थान जैसा जिन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेखरे एक रंग नाना विद किनु विस्तार प्रभु नसी एक ओंकार नाना चलत करे किन माए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत पे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान करना आओ नाम के तारे संग ले जाते नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे संग ले गास पताल नाम के तारे संग ले कार नाम के तारे पूरी सब भण नानक संग गुदरे सुन श्रवण कर कृपा जिसको अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सुजन गत पाए रूप सब जगह सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुख समय समाणी सत कर्म जा की रसना सत मूल सत सत उत्पाता सत करनी निर्मल निर्मली जैसे बजाय तैसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत जन जा करे प्रवेश सत निरत बुझ जा कोय नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित्र गाता जिसकी श्रेष्ठ सो करने आ रहा न बूझ करते विचार करते कि मित ना जाने की है नान जो पावे सो वर्ती है बिस्म बिस्म पै बिस्माल जिन बूझत आया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुरु के भजन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जग के संग तरह संसार जिनका सेवक सो बड़ भागी जन के संगी के लिए लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक।

जब अकार कृष्णा दस्तेता पापुन तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाध होता, बैर ब्रो के संग महात हो, जब इसका बन चिन्ह न जापद होता, बर्क सुखो कैसे व्यापता, जब अपने आप आप पर ब्रह्मता मुख काक्ष होवत परम अपने की लाभ वृत्ति जा नान करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त को किसको गनी, जब रेक हर गम अपार हो तब नरक सुर कहो कैसे कौन अवतार हो, जब निर्गुण प्रभ से सुभाए तब शिव शक्त कहो के ठाए, जब आप अपनी जो तर है तब कौन डर कौन कत डर है, अपने चलद आप करने हार नानक ठाकुर गम अपार, अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण कहो कहा बिना सुन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किशो हो, जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किश पूछत लेखा, जब नाथ रंजन गोचर गाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपना पापी उपर जा अपना पापी चर जा, नानक अपन रूप आपी उपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तब मैल क्यों कहत होता, जय निरंजन का निर्भाण ते कौन कुमान कौन बमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तै शल शदर रक्त को कीस, जय जो सुरंग पी जो संग समावे ता कैसे पुत कौन तृप्तावै, करण करावण करने हार नानक करते का नाहि सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग ब्राई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई, जय सर्वकला पेपर भीण तब वेद देव कहाँ कुचीन, जय अपना आप आप उतार है तो सघन सघन का विचार है, जय अपन हो जा अपना अपने हेरा ते कौन ठकर कौन कही है चेहरा, बिस्म बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत छानू आप, जय शल शेद भेद समाया हुआ किसे व्याप्त माया, आप सको आप आदेश ते गुण कराही प्रवेश, जय कह की कुवंता ते कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय अपने आप आप हारा दे कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊते उच्चा नानक आप सको आपे प्रहु उच्चा, जय आप रचो पर पंच कार होते गुण में किन विस्तार, पापुन तब एक आवत को नरक स्वर्ग बिछावत, आल जाल माया जंजाल मैं मोह भ्रम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की बख्यान, अपन खेल आप कर देखा खेल संकोच है तो नानक एक है, जय अवगत पढ़ते आप, जय पसर पसार संत प्रताप, दू पाक आपे धनी उनकी सो बन हूं बनी, आपे कौ तक करे अनचो, आपे रस भोग निर्जोग, जिस भावै तिस अपन नाहि लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै, बेसमार अथाह अगणता तोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै सलोक, जिए जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा का दस्टार, राष्ट्रपति आप कथे आप सुन निहार, आपे एक आप विस्तार, जा तस पावै तस सिष्टु पाए, अपने पाने ले सुमाए, तुम ते पे नहीं किछ होए, अपन सु सब जगत प्रोहे, जाको प्रभु जी आप जाए, सच नाम सो जिन पाए, सो सम दर्शी तत का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता, जी जंत्र सप्ताह के आत दीन दयाल नाथ को नाथ, जिस राख तस को न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसार है, तिस तक चबल कां को जाए, सब श्री एक निरंजन राय, जी की जुगत जा के सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ, गुण निदान बेंत पार नानक दास सदा बलियार, पूर्ण पूरे दयाल सब प्रोपत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जमी रहो आप, प्रतिपाल है जीवन बपात, जो जो सत्यात जिस पावत सिलय मिलाए, पवत करे हर के गुण गाए, माने अंतर विश्वास कर मान्या, करना नानक जानिया, जा लागा रे कह नाए, तुसकी आस न मिथि जाए, सेवक को सेवा बने आए, हुकम बूझ परम पद पाई, इसते उपर नहीं विचार, जा के मन बसया निरंकार, बंधन तोर पै निर्वैर, अंधन पूजा गुर के पैर, रेले सुखिया पर लोग सुहेले, नान कर प्रभ आपे मेले, साध संग मिलम करो आनंद, गुण गाओ प्रपर मानंद, नर राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ द्वे का करो उधार, नर अमृत बचन के गुण गाओ, प्राण तन का स्वाओ, आठ पैर प्रपे को नेरा मिटे ज्ञान बसिया, देरा सुनो उपदेश हृदय बसाओ, मन में छ नानक कृपा वल पल दो ले स्वा, राम नाम मंत्र उतार, पूरे गुर की पूरी देखिया, जिस मन बसै ते सच प्रीख्या, मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह ने बिके पतुमारी, एका टेक राखो मन माए, नानक बोर ना बो जा आवै जाहे, तिसे दूर कां को जाए, उबरे रखना आरते आए, निरपो जपे सकल पो मिटै, प्रभ कृपा दे प्राणी छुटै, जिस पर राखै तिस नाहीं दूख नाम।

जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगते हर पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपास जी। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जी। ओ पैज रखो हर जने केरी हर देव नाम निरंजनो अंत चल दया बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जी। ओ हर तार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कहे सबा जियो। मेरे सिख सुनो बुत पाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पा जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सबा जियो। भगत सतगुर पुख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद आनंद वजे वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया प्रवाणा फिरे नाही गुरजाए हर प्रपास जियो। सतगुर भाणे अपने वह परिवार सधाया मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजे मित बिकसै जित मितगी पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे। सतगुरु प्रताकों दे बैराज आप टिकाया सब सिख बंद पुत भाई रामदास पैरी पाया। अंत सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्बाण जियो। के सो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़ी हर नाम सुनिया बेबान हर रंग गुर पावे। पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोले।

संत सकल सूत्र तारी तुम ते होए तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास बोला जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु तिने ताप नवार नहारा दुखंता सुखरास ताको विघना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास अरदास इको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती सहाय वार श्री भगवती पाशे दसम प्रथम गौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अरदास रामदास हुए सार दिन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय श्री हर कृष्ण ते आईए जेह रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरें करणों दयावे ताए सब थाई हुए सार दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई सा दसम पाशे की जोत धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारे चौं साहबजादे चाली मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिन्हां गुरमुखा नाम जपया वन छकिया दीक चलाई ते गवाही देख के नट कीता तिना प्यारे सारे पुत्र कमाई वल ध्यान तरके बोलना जी जिन्हां सिंघा सिंघणियां ने धर्म हे सिख दिते बंद बंद कटवाए फोपनियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चड़ियारे नाल जराए गए गुरुद्वारे की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां संग निभाए तिना दे पुत्र कमाई वल ध्यान तरके बोलना जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारे का ध्यान तरके बोलना जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जत्याव जत्याव का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहब तह तह रचया रहा देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलना जी सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान सह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर दर्शनी इशनान चौंकिया झंडे पुंगे जुगो जुगटाल धर्म का जयकार बोलना जी सिखा दा मनी मां मत उची मादा राखा वाहिगुरु अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जीओ श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणियां दे माण नितानियां दे तान न्यूटियां दी ओट धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी आप जी दे हुकम अनुसार जिहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए घले आवे नानका सदे उठी जाए सतगुर से पातशाह आप जी हुक्म अनुसार आप जी दे भाणे इंद्र सतगुर से पातशाह जी आप जी दे चरण सेवक सरदार गुरदीप सिंह सतगुर से पातशाह जो आप जी को सुहासा रूपी पूंजी लैके आए सन उस पूंजी नूं पूरियां करदे उस मात लोक की यात्रा तय करदे सतगुर से पातशाह कुछ रोज पहला अकाल चलाना करके हम सतगुर से पातशाह उन्हां दी आत्मक शांति लई सतगुर से पातशाह उन्हां दे अंतम संस्कार तो उपरंत सतगुर से पातशाह जी आप दी हजूरी अंदर सतगुर से पातशाह गुरमुख परिवारों वालों भैन भरा सज्जना मित्रां वालों सतगुर से पातशाह मिलजुल के आप दी हजूरी अंदर श्री सुखमनी साहब के जाप अलाणिया के जाप रामकुली साध ते गुरु शब्द चौंकी जी की अरदास है जी सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद हो बाणी पढ़ते अनेक प्रकार की गलतियां भुला हो गई उनके अनजान जान को माफ करना अगों वास्ते सुते स्पष्ट बाणी पढ़न का बल बख्शना पढ़े सुनी बाणी का भाव सरा गुरदीप सिंह विछड़ी आत्मा बख्शना विछड़ी आत्मा अपने चरणों में निवास पिछे परिवार वखे विखे सज्जना मित्रों भैन भरा सुख भाणा मनन का बल बुद्धि समर्था बख्शने अंग संघ होके सहायता करनी चढ़दी कला की दात बख्शी नाम बाणी ना प्रेम बख्शना सतगुर से पातशाह जी गुरमुख प्रभ सतगुर से पातशाह गुरदीप सिंह संसार च विचरद अनेक प्रकार की गलतियां भुला हो गई होने गौणा गौना विचारने अंग संघ होके सहायता करनी सतगुर से पातशाह जी सिर ते मेहर प्रयात रख के सतगुर से पातशाह श्री देवी काल जी अपने चरणों में निवास आवागम तरैत करना सतगुर से पातशाह जी आप जी चरण सेवक सर सुखविंदर सिंह मनजिंदर सिंह सतगुर से पातशाह वालों गुरदीप सिंह की आत्मक शांति लिया मिठी याद मनाते सतगुर से पातशाह इक्की पूर्ण मायात्म सेवकों के खजाने भरपूर अपने चरणा कमलों की प्रीत बख्शनी अंग संघ होकर सहायता करनी आप जी के बख्शे हुए खजाने विचों अमृत कड़ा प्रसाद की देख हाजर भी दर प्रवान होवे दर प्रवान होया प्रसाद विश्वास सिंह वरते जो छके स्वामी का ही नाम सतनाम श्री वाहगुरु जपया सुले आप अपने मुकारबन चो पोत्र हुक्मनामे बख्श दरियां संगतन कृतार पोत्र हुक्मनामे ते चलन दा बल बख्शो सही गुरमुख प्यारें दा मिलना जिन्हां मिले आप दा पोत्र नाम जिते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੇ ਚਲਾਇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ

तुम शरणागत तुम गढ़ पुरख बडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर बेचोली जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर बेचोली।

जब पहले सब सृष्ट उपाई तब ही मानुख देह बनाई तन इसके सिर केस जो दीनो सो ए तन श्रृंगारें कीनो दाड़ा मूछ सिर के

नरसेनार होए अवतरे शिव शिव करते जो नर ध्यावे बर्द चने डौरू टमकावे भजे देव कोई और महामाई की पूजा करे नरसेनार होए अवतरे तू कैयत ही आद पवानी मुक्त की बरिया

बिन जब पड़े प्रसाद जो पावे, बिन रह रास समा जो खोवे, कीर्तन पड़े बिना जो सोवे, चुगली कर जो काज बिगारे, त्रिग तिस जन्म जो धर्म बिसारे। प्रातः काल सत्संग ना जावे, तनखादार वे वड्डा कहावे, सत्संग जाए कर चित डुलावे, हर जस सुनते बात चुलावे, निर्तन देख ना पास बहावे, सो तन खाई मूल कहावे, कथा कीर्तन में मन नहलावे, संत सिख को बुरा अलावे, निंदा जुआ फिरे जो माल, महा दुख

कौन की सेवा करे बिसेख मधुर बचन साहेबन को भाख चाकर सिंगन को ही राख चाकर सिंगन।

धन कीरत सुख राज बड़ाई युवती सुत विद्या बहु भाई ए सब दात गुरु की जाने ए सब दात

सगल जगत अपने सुख लागयो, दुख में संग ना होई, एह जग मीत ना देखियो कोई, एह जग मीत ना देखियो कोई। सोरठ महला नौवां, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जीओ। एह जग मीत ना देखियो कोई, गौड़ी महला नौवां, साधो रचना राम बनाई। एक बिनसै एक अस्थिर मन है, अचर्ज लखियो ना जाई। सोरठ महला नौवां, अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहन, भज ले

तुद आपै भावै सोई वरतै जी, तू आपे करे सो होए। तुद आपै सिष्ट सब उपाई जी, तुद आपै सिरज सब गोई।

प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिन तो नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानक देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिलसाद संगत पज के बल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन वृथा जात रंग माया के रहाऊ। जप तप संजम धर्म ना कमाए,

प्यासा तूर भजन की रहे प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ जो बर चहूं सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सतर।

तैत जच्छन उपजायो आद अंत एके अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तसहि को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी। सिवकन कौ सिव गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बध गियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीज पछानै कट कट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हो। जेते बंधन श्रेष्ठ सब ता।

सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाए न हरे हो ताके ताप तन कमो हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होए दुष्ट सास

सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरिया पौड़ी।

जस से मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

संपद बनता विनोद, छोड़ गए बहुत लोग पो हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलेओ है मूड नंग, चोआ चंदन देहे फूलिया, सो तन धर संग रुलिया, सो तन धर संग रुलिया, सो तन धर

त्यों अख से शरीर ए दोए अखर ना खिसे जो गह रहे हो कबीर। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो, जय सिख है संग्रहयो तत हर चरण मिलायो। तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे।

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल

सखा तू ही मेरा मीत। धन गुरु नानक देव साहब जी तू मेरा प्रीतम तुम संग ही तू मेरी पत

जेवा एक कमन गुन कही है। बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही, सतगुरु।

सतगुरु गुरा गुरु अबनासी पीरा पीर वखाणिया नाथा नाद साध संगवासी गुरमुख पंथ चलाया गुरसिख माया विच उदासी सनमुख मिल पंच आखियन बिरद पंच परमेश्वर पासी गुरमुख मिल परवान पंच साध संगत सच खंड बिलासी गुर दर्शन गुर शब्द है गुर दर्शन गुर शब्द है निज घर पाए भगत रह रासी मिठा बोलन निव चलन खट खवालन आस निरासी सदा सहज बैराग है कली काल अंदर परगासी साध संगत मिल बंद खलासी निरंकार आकार कर सतगुरु गुरां गुरु अबनासी।

वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेवया अंत बार, रे मन सेव तू पर पार, तने सेवया बाल बुद्ध त्रिलोचन गुर मिल पही सद सिद्ध, बेणी को कुर कियो प्रगास, रे मन तू भी हो है दार। जय देव त्याग्यो अहमे नाई उधरयो सैन से, मन डीग न डोले कहूं जाए, मन तू ही तरसे शरण पाए, मन तू भी तरसे

रख ले हो हम ते बिगरी शील तरम जप भगत न कीनी हाँ अपमान तेज पगरी अमर जान संची एकाया एह मिथेया काची गगरी।

0: नेत्र देखें दर्श तेरा राम, लाख जेगवा देहो मेरे प्यारे।
1: मुख हर आराधे मेरा राम,
2: हर आराधे जम पंथ सादे, दुख ना व्यापै कोई, जल थल मैयल पूर्ण स्वामी।
1: जात देखा।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की कीमत परी